ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।

गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वद्धि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम।

0: हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डीजी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है। क्या ना, जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं, कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वं मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है, कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव महादानंद जी महाराज जी कहते थे, सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशावास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य सुदिनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation Austria or India? Okay. India, Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: De paise.
2: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, विश्व शांति नेपाल के लिए। तो ब्रह्म ऋषि जी आइए आप, एंड प्लीज सिंग वन भजन दर्द दुख दूर हो जाए, दया हो जाए। मिश्री लाल जी ब्रह्म ऋषि पी थावला नागौर
1: नागौर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बने क्या, और वो भी भारत खंड के अंदर बने क्या। 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना गलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज इस संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 82-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्चंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी

आद रूप पर ब्रह्म, एको हम बहुश्यामी, आई एम वन एंड नाउ आई विल मल्टीप्लाई माई सेल्फ, दैट वॉज कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, द स्पेस एंड कॉन्शियसनेस बिटवीन इज द दैट शक्ति, दैट्स कॉल्ड योग, यूनाइटिंग, बैलेंसिंग, हार्मोनाइजिंग. These are the three qualities or definition of the Om and Yoga. Omkar Bindu Sayuktam Nityadhayanti Yogina. Akar, Ukar, Makar. Akar, Ukar, Makar. The form, the sound, and the awakening. Within this becomes the yoga. Yoga is not a part of any religion, but yoga is not a part of any religion, but all religions are part of the yoga. Because dharma, mantra, yantra, tantra, prathana, ukar, makar, whatever in any religion you are repeating or saying, the definition of the God is that coming from that first nada rupa parabrahma. That is a omkara. Don't take om as a religious symbol. I'm sorry for that. It's a shame that Indian government managed to make a day, international day of yoga, but they removed the Om. That is not correct. You did not represent the yoga properly. My dear, just twisting body up and down, this is not a yoga. I am so surprised. I am born in India. I am international Baba. How can happen that Indian government don't know what is the yoga? Challenge my challenge. Asan pranayam, neti dhoti basti nali trata kapal bhati. Ye to chote sa hai kuch. If you announce the yoga, represent in proper way what is the yoga. Therefore, all my dears around the world who is listening me, and all other yoga teachers and centers, please write to them, government of India, why we are questioning them, why did you remove the symbol Om from yoga? One way they said is, it is the science of yoga, is body, mind, consciousness and spirituality. So where is the posture is connected to spirituality? Where is a posture is representing the consciousness? Where the posture is compared with the postures with the mind? Physical, this is called yoga vyayam. And through this yoga vyayam, certain systems in the body will be harmonized. But yoga is not only the exercises, yoga is beyond that. And being the motherland of the yoga, it is the first duty of the government of India to represent yoga in better way. Don't be fearful. Don't think the world will say this is a Hindu. What have you against Hindu? What have you against Hindu? Bataiye. Kya Hindu dharma ke andar koi kami hai? Kyon aap darte ho? Hum om likhenge to kahenge dharma ho gaya. Are vaak kairo.
तीन सजावट देश को सती संत और सूर और तीन लजावत देश को कपटी कायर और करूर। तो क्या आप करूर हो गए? आप घबरा रहे हो? माता जने तो भक्त जन के दाता के, नहीं तो रहिए बांझ मत गमाइए नूर। तीन सजावत देश को सती संत और सूर और तीन लजावत देश को कपटी कायर करूर। अगर आप अपने आप को कायर समझते हो तो घबरा, इट इज ए संप्रदायिक। क्या संप्रदायिक कहते हो मेरे बच्चों? हिंदुस्तान सभी धर्म की मातृभूमि है, सभी धर्म योग से निकला है, योग किसी का धर्म नहीं। देयरफॉर आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमान मोदी जी, प्लीज डू नॉट रिमूव द ओम फ्रॉम द लोगो विच आपका द आयुष डिपार्टमेंट हैज डिस्ट्रॉयड दिस सिंबल इन होल वर्ल्ड। इन आई ट्रेवल 43 टाइम्स राउंड द होल वर्ल्ड, दे आर मैनी मैनी योगा सेंटर्स, मैनी मैनी फ्रॉम मैनी साधुस एंड समवन हु हैव नो साधु देयर, दे इवन डिडंट सी द गुरु, दे डिडंट कम टू इंडिया, बट दे हैव अ योगा सेंटर, योगा स्टूडियो एंड दे हैव अ ओम ऑन इट एंड एवरीवेयर हु इज प्रैक्टिसिंग ओम इन द वर्ल्ड, मे बी दिस मुस्लिम्स और द क्रिश्चियंस और हिंदूज और यहूदीज और एनी वन, फर्स्ट दे विल सिट इन मेडिटेशन एंड चेंट ओ। अकार उकार मकार परा पश्यंती बेकरी, आस्क देम व्हाई दे चेंट द ओम, बिकॉज व्हेन यू चेंट द ओम देन बॉडी माइंड सॉल एंड आत्मा बिकम्स वन, साइंटिफिकली प्रूफ्ड। देयरफॉर माई मैनी मैनी योगा डिसाइपल्स, मैनी मैनी अदर योगा सेंटर्स विच इज नॉट कनेक्टेड विद योगा एंड डेली लाइफ, बट दे आर सेइंग टू मी, स्वामी जी व्हाट हैपन्स, नाक काट दिया, यू चेप्ड ऑफ द नोज, वो नोज फिर नहीं जुड़ेगा, वो नोज कटता ही नहीं है किसी से, नो वन कैन चेप ऑफ दैट नोज ऑफ दैट डिवाइन साइंस ऑफ योगा। देयरफॉर योगा इज गुड फॉर ऑल, डोंट थिंक फॉर रिलीजन्स, योगा इज फॉर योर हेल्थ, फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल, योगा इज अ वे टू द परमात्मा। इट इज सेड योग के द्वारा ही परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं, इट वॉज द वॉइस ऑफ द उपनिषद, इट वॉज द वॉइस ऑफ द पतंजलि, इट वॉज द वॉइस ऑफ मैनी सेंट्स, से टू डिसाइपल I will lead you to the supreme Brahma Jnana, my word, my Jnana, I am the way to God. Then it was also sent in the 10 commandments, that where God said, I am way to God. Yes, why did Jesus say this? If Jesus was there, because people were gambling, सट्टा खेल रहे थे with the gold in the front of the temples. Jesus came and saw the gold. Jesus said, don't believe in this wrong gold. He's not a god. I am the way to God means my words will lead you to God, not this gold. So gold को God में change किया, but it's right, Jesus' words is correct. अरे पैसे कुछ नहीं है, पैसे भगवान नहीं है,
कलयुग में रुपयो राम तो देख लो कहीं हो रहा खोटा खोटा काम है। इसीलिए दैट्स वाई द डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अनाउंस बाय आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड द होल वर्ल्ड वॉज सो हैप्पी दे थैंक्स द मोदी जी एंड इट बिकेम वेरी फेमस। बट देयर वॉज अ ट्रू अलार्म एज सून इट वॉज अनाउंस्ड। फर्स्ट अलार्म वॉज फॉर दोज योगीज हु इज लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, दे आर इन डेंजर्स बिकॉज दे डिड नॉट अलाउड योगीज टू स्टे देयर एंड टीच योगा बिकॉज इट्स अ रिलीजन। सो दे वर एंग्री, दे वर अटैकिंग। बट देन देर वॉज ए ओम एंड आयुष वॉज ऑल्सो ओम एंड सडनली मूव्ड। अदर कंट्रीज पीपल वेर लाफिंग, इंडियंस आर सो कावर्ड फियरफुल। ओम को हटा दिया, ओम को हटा दिया तो मानवता को हटा दिया है। ओम है, ओम से तो आमन आया है, ईसाई कहते हैं आमन है, मुसलमान भी ऐसे कोई समझे क्या कहते हो आमीन कहते हैं है? तो आमन आमीन ओम से ही तो है। देयरफॉर ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लीज डू राइट अ लेटर डायरेक्टली टू ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी एंड राइट योर ओपिनियन because we are not afraid of religion. Religions are not bad. No one is afraid of religion, those who are practicing yoga out of India. Only within India you are, jabki tum India ke ho. So yoga is not a religion, not a fanatism. It is yoga is a cosmic law, the cosmic science. Yoga is a uniting, balancing and harmonizing, and that is Om Akar Ukar Makar, and that Ekoham Bahushyami, that time was no name of any god. Upanishad has no name of any incarnation. Vedas have no name of any incarnation. Only Brahman. So you say Holy Father and we say the Brahman. So science of yoga and Bhagwan Shiva Swayambhu, he is the author of the yoga. Mantra, yantra, jantra, jnan, dhyan, meditation, yoga, whatever all but human knows today is the blessing of the Shiva given to the mankind in order to serve all creatures and protect the humans from the Asuri Shakti and lead towards the Devik Shakti. So I'm sure people will appreciate, the whole world is celebrating the 21st of June and they are thanking the Modi ji and our Brahmalina Pujya Anandananji Maharaj. He's Mahasamadhi Day, Brahmalin Day is also 21st of June. So how so we can celebrate Day of Yoga and Swamiji's Barsi celebration. So my dear India, still Indian Bhaktas, Indian people, every Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, all they are helping the Nepal people and many, many people from many, many countries, they are coming. We are thankful for them and we pray to Almighty that it should not happen such thing
anywhere

0: Go.
1: Three.
0: हाय प्रेमानंद जी, आपका
1: और हाय सिक्स लेफ्ट लेग फॉरवर्ड सेवन
0: Doors open some. Windows, windows.
1: Nine.

श्रद्धा विश्वास मेरा कम नहीं होवे। ओ लॉर्ड, माय श्रद्धा, माय कॉन्फिडेंस, माय फेथ, माय फेथ एंड माय कॉन्फिडेंस इज वेरी लिटिल डिफरेंट, शुड नॉट रिड्यूस, शुड नॉट डिम, बट दिन दिन दूना बढ़ता रही जो, डे बाय डे मोर एंड मोर शुड इंक्रीज श्रद्धा। सो सत्संग, हरिकथा एंड श्रद्धा, ईश्वर भजन एंड द फोर्थ नवदा भक्ति ऑफ नारदा, ईश्वर भजन। ईश्वर द गॉड, भजन मीन्स सिंग द नेम ऑफ गॉड, रिपीट योर मंत्रा, मेडिटेट ऑन द गॉड, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, गॉड इज गॉड। डजंट मैटर इफ समवन ब्लेम्स, लेट देम ब्लेम, समवन डजंट लाइक द सन and takes the dust full of the hand and throws the dust to the sun, what happens? It will fall on him. It will not come to the Lord. Once someone was writing to Guruji, Holy Guruji, about Maheshwaranand something, and Holy Guruji wrote back, if someone throws the dust to the sun, will fall on them. Who is blaming Maheshwaranand, this karma will go back to them. And it happened. So, Ishwar Bhajan, God is God. Because you don't like that God, or you don't like me and you don't believe my God, and I don't like you so that I don't believe your God. This is problem between you and me, not in between God and us. That's it. Therefore, God is God. Ishwar Bhajan, think of God.

0: हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डीजी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठात एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है। क्या ना, जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं, कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वं मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है, कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर लिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ओईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation Austria or India? Okay. India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: De paise.
2: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, नेपाल के लिए। तो ब्रह्म ऋषि जी आइए आप, एंड प्लीज सिंग वन भजन दर्द दुख दूर हो जाए, दया हो जाए। मिश्री लाल जी ब्रह्म ऋषि पी थावला नागौर कैचमेर है
1: नागौर, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बने क्या? और वो भी भारत खंड के अंदर बने क्या? 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख ईट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वर जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर क्या? जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरोगे। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, देखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी महाराज। विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवेगा। जब परमात्मा की कृपा होगी जो

रहे सुखी यारी रे, ओम की रचना सारी रे, ओम की रचना सारी रे। एवरीथिंग, ऑल व्हाट इज विजिबल अनविजिबल, हियरिंग टेस्टिंग फीलिंग, ऑल दिस इज ओनली फ्रॉम वन, फ्रॉम द ओम, द साउंड। ओम इज द क्रिएटर, ओम इज द होल यूनिवर्स, द साउंड दैट हैज, ओम हैज नथिंग, नो फॉर्म टू सी, निराकार, निराकार हैज नो आकार। ज्ञानी जाने वेद सोही, रहे सुखियारी रे।

ओमकार ओमकार में जीव रहे सब देहधारी रे। इन दैट ओमकार लिविंग ऑल द सॉल ऑल जीवास एंड ऑल हु हैव बॉडी दे आर इन द ओम। Evening we will do continually, okay? So, again come to the Brahmari. How many times? 15. Okay? Without movements. No movements. Deep inhale. Not moving.

0: राधे भगवान श्री नारायण महाप्रभु जी
1: की जय हो।
0: श्री सियालकपुरी जी महादेवा की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री हिंदू धर्म साम्राज्य परहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की।

ॐ नमः श्री प्रभुदीपाय श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलकपुरी जी महादेव की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति। भजन

0: की जय। श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय। श्री शलपुर जी महाराज की जय। हिंदू धाम समरथ सतगुरु स्वामी माधवरण जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय।
1: जय।
2: वेरी गुड, थैंक यू, हरिओम एवरीबॉडी। Today is finished.

0: ओम्बोले श्री दीप नारायण ज्ञान की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी जी महा

बड़े सिद्धि भगवान देव पुरुष महादेव की जय। श्री सिद्धिप नारायण भगवान की जय। श्री अलकपुरी जी सीधा पिता परंपरा की जय।

0: की जय। हिमालयन सिद्धवता सियालकपुरी भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत्व गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: I'm not sure. I'm practicing. Okay. Make sure.
2: But I wouldn't go.
1: You. You don't have to sing. Okay, then you sing.

अम्बले श्रीदीपनारायण भगवान की जय, गुरुदेव की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेवा की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।

0: श्रीदी प्रणायम भगवान की जय, गुरुदेवा की जय, सब ऋषि मुनि महात्माओं की जय।
1: श्रीदेव पुरुष महादेव की जय, श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय, श्री सियाल पुरुष महादेव की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेव की जय, श्री महामंडलेश्वर स्वामी लालानंद जी महाराज की जय, विश्व गुरु श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

देवाधिदेव श्री देव पुरी जी महादेव की जय। श्री अलकुरीश महादेव की जय। श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेव की जय। महामंडलेश्वर स्वामी लालानंद जी महाराज की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।